गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी।

तारे। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर किते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे।

है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब सच नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आँख थके।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी।

तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ

तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे। पहु जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिनको

जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिससे मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब

अपनी सेवा प्रवान करनी जी पंचों की जीवन आवश कर रहे हो भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पासों पावन पवित्र चल रही लड़ीवार कथा सरवण करिए जी। मिलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन गुरुदेव पिता साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दातार जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप सात संगत जी, आप जी वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका शामा दे दीवाना दी हाजरी प्यार नाल भावना नाल श्रद्धा नाल भर रहे हो। गुरु कृपा गुरु बख्शिश सदका आप जिया ने अमृत बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी तिना दे जथे पासों सरवन कीता है। उपरंत जो मलार की वार दी आपां विचार कर रहे हां, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज 22 वारां विचों ए तरतीब अंदर 21वीं वार है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे श्री मुख तो उचारण कीती गई। इस अमृत वार दी अज 7वीं पौड़ी दा पाठ आप जी ने सरवन कीता है। इहदे नाल दो श्लोक सतगुरां ने पंचम पातशाह जी ने अंकित कीते हन, जो गुरु अमरदास तीसरे गुरदेव जी दे हन, उन्हां दी विचार आपां कल कीती सी। उन्हां श्लोकां दा भाव इह सी कि जिस जिज्ञासु दे अंदर वाहिगुरु दे दर्शनां दी प्यास है वो कदी पुकारे तो बिना रह नहीं सकता। हालांकि मिलना वरसना उन्हें अपनी कृपा नाल है, वाहिगुरु ने दीदार दर्शन अपनी कृपा नाल देने ने, पर फिर पुकार क्यों है, बबीहा पुकारदा क्यों है, भी बेहे दी पुकार नू सुन के बदल वरदा है कि बदल अपनी मर्जी नाल वरदा है। इहदा भाव यह है कि बेनती नू सुन के परमात्मा दीदार दिंदा है कि अपनी मौज विच दिंदा है। तां गुरु साहिब जी ने बचन कीते ने भी उहदा दीदार उहदी कृपा उहदे दर्शन उहदी रहमत नाल मिलदे ने, पर जो उसका पात्र है वह अपनी पात्रता पुकार पुकार के सिद्ध करता है कि मेनू लोड़ है, मेनू तेरे दर्शना की भुख है, प्यास है। वह बबीहे वांगू कूकता है, पुकारदा है, ते जदों इस तरह बबीहा बोलता है, जिज्ञासु पुकारदा है, ते उधरों वाहिगुरु की खुशी हुंदी है, फिर वह अपने दर्शना का मीह वरांदा है, जिन्हों आपां बाणी विच पढ़ते हाँ, बाबीहा अमृत वेले बोलिया ता दर सुनी पुकार, मेघै नू फरमान हुआ वरसोहो कृपा तार। इत्थे बबीहे दा अर्थ है जिज्ञासु, ते मेघ दा अर्थ है गुरु, फरमान करन वाला है अकाल पुरख वाहिगुरु, मीह रूप विच है गुरु दी बख्शिश, गुरु दी रहमत, गुरु दी कृपा। दूसरे श्लोक विच सतगुरां ने तीसरे गुरुदेव जी ने दर्शाया भी जदो अंदर यह महसूस होंदा कि मेरा उहदे नाम तो बिना गुजारा नहीं, उहदी कृपा तो बिना गुजारा नहीं, फिर अंदर व्याकुल हो जाता है, कलमल हो जाता है, मोहे लागदी ताला बेली, बछरे बिन गायें अकेली, पानिया बिन मीन तलफ है, ऐसे राम नाम बिन बापरो नामा, जैसे ताप ते निर्मल कामा। जिवें कहिंदे चमड़ी कोमल होवे ते काम नाल तिखी धुप दे नाल सड़न लग जांदी है, इस तरह कहिंदे वाहिगुरु मेरा कोमल हिरदा तेरे तो बिना तपदा है, क्रुझदा है, मैं तेरी तां पुकार तेरी तां मंग करदा। यह दो श्लोकां दा भाव सी जिदे विच वाहिगुरु दे मंग वाले दी भावना दसी है, ते नाल क्या है भी गल्लां नाल सारे कहिंदे ने भी वाहिगुरु दे दर्शन हो जाण, किसी नूं पुछ लो भी रब चाहिदा सब तो पहला हाथों ही खड़ा करेगा, हां मैं दर्शन करना चाहना, मैनू चाहिदा परमात्मा दा दीदार, परमात्मा दी कृपा,
ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਬਬੀਹਾ ਬੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲ, ਉਹ ਤਲਾਬ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤਰੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੱਤਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ

तुमरी गत मित नानक दास बोलना जी सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकाय गुरु नानक लिंग ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ दयावे ताए सब थाए वैसा दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाए सह दसा पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपया वण छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां संघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कपाए खोपड़ियां लुहाईयां आरे नाल चराए गए चरखड़ियां ते चढ़े गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निवाही तिन्हां सिंघां संघणियां ओ चंगियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी अर्थ में सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रक्षा रहा है देख देख पता है व्रत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सरदान आमदान श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पंदा राखा पवाए गुरु हे अकाल पुरखा अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो जी हेर माणियां के माण सतगुरु जी नताणियां के तान सतगुरु जी ने ओटियां दी ओट धन धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ ऐस वेले आप जी दी अपार बख्शिश होई है ते आप जी दे मेहरां दा सदका है पातशाह जी आप जी ने बख्शिश की आप जी के पावन हजूरी विखे रात्रि दे सुंदर दीवान सजाए सजे दीवाना अंदर आरती आरता शब्द कीर्तन उपरंत कथा विचार उपरंत इलाही बाणी दे कीर्तन होए पातशाह जी कीर्तन करदे हां बाणी पढ़दे हां विचारियां करदियां आप जी दे हजूरी विच विचरदे हां दासां पासों बच्चों पासों बेअंत बेअंत प्रकार दियां भुलां हो गई होणगियां पातशाह जी अपने अणजाण बच्चे जाण करके बख्श लैणा जग नूं समत बख्शणी गुरबाणी पढ़ी सुनी दा भाव सब सात संगत दे हिरदे दे चसावणा दर आई सब सात संगत दी हाजरी कीते तिल फुल भेटा प्रवान करने जी अपने दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन भरोसा दान बख्शणा कारज रास करने स्वास स्वास सुमन करवाणा दातार जियो संगतां घरां च बैठियां लाइव कीर्तन सुनदे हुए दातार जियो आप जी दे सेवादारां वास्ते गुरु घर वास्ते बेअंत माया अरदासां भेटां करवा रहे हन दातार जी जो भाव नरक सेवक सेवा करवा रहे हन सो भावन मैं पूर्ण करनी है कारज रास करने स्वास स्वास सरन करौणा चरणा को लख अरदास बेनती बच्ची साखी कौर की चढ़ती कला ते तंदुरुस्ती लई अरदास बेनती करदे हुए सेवक परिवार वालों बेअंत माया गुरु कर लई अरदास भेट हाजिर हुई पातशाह जी कृपालता करनी जो भावना करके सेवा कीते सो भावना पूर्ण करनी है बची दे सीस ते मेहर प्रयात रखना तंदुरुस्तियां बख्शनिया चढ़ती कला वाला जीवन बख्शना स्वास स्वास सिमरन करवाना पातशाह जी कृपालता करो पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श करके पवित्र आशीर्वादा बख्शो पातशाह जी से प्यारे मेर जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चित्या वै सुख होवै नानक नाम चढ़ती कला।

जी की फतेह। सोरठ महल्ला नौवा। मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे,

की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी ने तरस किया है। अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक बख्शिश किते हन, जो सोरठ राग विच्चों सतगुरां दे पावन अंग 631 अते 32 उपर पावन शब्द सुभायमान है। गुरु तेग बहादुर 9वें सतगुरु दतार पिता महाराज जी की अमृत रसना तो यह अमृत पावन शब्द उचारण किया गया है, जिस विच सतगुरां ने मानस देही मनुखा जन्म की सफलता अते असफलता का जिक्र किया है कि जेड़े लोग मानुख देह प्राप्त करके उस गुरु परमेश्वर धर्म के कर्मा तो मूँह फेर लेंदे ने उन्हां दा जन्म अजाई बतीत हो जाता है, उन्हां नू ना कदी गुरु की सेवा का मौका मिलता है ना धर्म के कर्म करन दा मौका मिलता है, ते काल उन्हां दे सिर ते आन खलूंदा है। जिन्हां ते गुरु ने कृपा कीती हुंदी है, जिन्हां नू ए समझ आ गई कि ये मानस देही प्राप्त हुई है, इस देही का मकसद प्रयोजन यही है कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन करके उस विच अभेद हो जाना, सच नू जान लेना, वो अपने मानस देही नू सफलियां कर लेंदे ने। बाकी लोकां दी ये देह ये जीवन सदा भटकना विच ही गुजरदा रहिंदा है। गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कृपा करन, अपने चरणा की प्रीत और प्रतीत बख्शिश करके निवाजन, साडा मिलिया होया ये मनुखा जन्म सफला हो जाए। अज साहिब सतगुरु धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह अष्टम बलवीरा सतगुरु जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब है। अज के दिन सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने श्री कीरतपुर साहब की धरती से 7वें गुरदेव गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह अती माता कृष्ण कौर जी दे उदर तो 1656 ईस्वी नूं सावण वदी 9 1656 ईस्वी नूं सतगुरु जी ने पावन पवित्र प्रकाश धारण किया सी। बहुत छोटी उम्र दे विच गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह गुरियाई दे तख्त ते बैठे, दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दा पावन अस्थान जिथे गुरदेव जी ने जन्म धारण किया, प्रकाश धारण किया, गुरुद्वारा सीस महल साहिब कीरतपुर साहब की धरती ते सुशोभित है। दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने 3 साल गुरियाई दे तख्त ते बैठ करके सतगुरु दतार गुरु नानक दे घर की सेवा की, गूंगिया नू ज्ञान बख्शिश किया, मूर्खां नू विद्या बख्शिश की, कंगालां नू धन बख्शिश किया, अंदर तो टुटे हुए साकत मनुखां नू वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम नाल जोड़िया, चोरां नू साध बनाया। इह गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी ने बड़ी छोटी उम्र विच गुरियाई दे तख्त ते बैठ के ये बख्शिशां कीतियां। कीरतपुर सों दतार पिता महाराज जी जदों दिल्ली वल जांदे हन उस रस्ते विच अनेकां दुखी कोड़ी दुखियारे संताए हुए लोकां दा सतगुरु दतार पिता महाराज जी नाल मिलाप हुंदा है, ते गुरु साहिब जी दे दर्शनां नाल ही उन्हां नूं शांति प्राप्त हुंदी है। औरंगजेब ने बड़ा जोर लाया सतगुरां नूं चुकाउण दा, पर दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह कुल निरंकारी जोत सतगुरु सदा अपने अकीदे ते अटल रहे। दिल्ली जाब राजे दिल्ली दीआं संगतां ने दर्शन किते, उत्थे वड्डी बीमारी फैली, आप गुरु साहिब जी ने हत्थी लोकां दी सेवा कीती, दर्शन दे करके सतगुरु जी सारिआं नूं रोग मुक्त करदे सन। तां ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इह वचन कहे ने, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए, ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी का अज प्रकाश पुरब है। गुरुदेव पिता महाराज जी कृपा कर सभना नूं 8वें गुरुदेव जी दे आगमन दिहाड़े दियां प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। सतगुरु जी कृपा करन सभना दी कीती हुई सेवा थाएं पाउण,
ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਾਅ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜਨ। ਆਹੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कलेश तन माही मिटावों सिमरों जास विसंबर एकै नाम जपत अगंत अनिकै।

प्रधान। प्रभ को सिमरहे से वे महताजे, प्रभ को सिमरहे से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरहे से सुखवासी, प्रभ को सिमरहे सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहाए, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे। प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता। प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरी।

प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पाए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन ता

हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनु दान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग।

सेवा प्रभ दीना। हर हर जन कै उठसतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड़

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत व्याख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया।

नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, महा उदास तपी सुर थीवै, अगन माही हुमत प्राण, कनिकसव हैवर भूम दान, न्योली कर्म करै बहुआसन, जैन मार्ग संजम साधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, ताओ पी हो मैं मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्भ गुमान मन ते हुट्टै, सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तंते जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबू न बिखिया टरै, जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध का होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच, बहुत सियाण जम का भाव व्यापै, अनिक जतन कर तृष्ण न त्रापै, भेख अनेक अग्नि बुझै।

ऐसा जिना की सरनी परे। जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल बल जासा। जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सासंग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते उच्चा। जाकै मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पिखै सगल श्रिष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप गुण नहीं ले पा।

पावे, कर गहलेहु ओढ़ निभावे, कहाँ बुझारत बुझै डूरा, निस्कहिए तो समझै पूरा, कहा विष्णु पद गावै गुंग, जतन करै ताओ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाउस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सो आवै ना चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलुआ के गृह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ करमान मने प्रतीत, काल न आवै मूढ़े चीत, भैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत

कीजै सद नमस्कारा। जाकै मन लागा परमीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोग नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी दे रासु, खात पीत बरतैन दुलासु। अपनी अमान कछ बहुर साहु, ले अज्ञानी मन रोस करे।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति ही अमृत कारे तिस ठाकुर कौ रख मन माही। जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिसको सिमरत परम गत पावह। जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिस हत्याय सदा मने अंदर। जे प्रसाद ग्रह सम सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटम ब्रह हंडावह तिसह त्या कतवर लुभा।

मानै मुक्ता को जस रचन बकानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप दर कह मान पावै नानक पद चेती घर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिवला बहुत इस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे।

जी प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।

कहै जे प्रसाद सुनहै कर्णनाथ। जे प्रसाद पिखै बिस्माद, जे प्रसाद बोलै अमृत सुना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह समाव है, ऐसा प्रभु त्याग।

कतहु तावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत।

साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसे थान उच्च, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन बीच कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को

साध के संग सफल जिनाम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला सा संग बिछुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदर साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मंत्र बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लग्गे ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साधु पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जिता सुनै तेता बखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही।

साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे किस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल्पवान।

ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्मज्ञानी कै ना ही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्मज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार। नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्मज्ञानी कै बसै प्रभसंग। ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधारु, ब्रह्मज्ञानी कै नाम परवारु, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास। नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संगहिता। ब्रह्मज्ञानी का हुई अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्मज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी कंत न पार। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सर्व सृष्टि का कर्ता। ब्रह्मज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।

नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानको अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो मन में प्रीत निरंजन दर्शो पर त्रै रूप न पेखै नेत्र साथ की टहल संत संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरै मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा पर सुबह सुनो सो जी सुपर सुपर सन विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं पाछे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मलको वै तिस भगवती की मत उत्तम हो वै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नामा तुम्हें शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नया वै वेद प्राण सिमृत बूझे मूल सुखम मैं जाने अस्तूर चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सात संग पावे जन को कर कृपांतर उर तारै पस प्रेत मुगत पाथर कौतारै सर्व रूप का उपद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कित न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतराम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गय परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा सुख सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर रखे तैसा तिन्नाओ आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई फुन होग पसर आप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक उस्तत कर है अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कप का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते कंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अदंग यानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सून नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राज स्थाम सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिर मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग की नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा सब ते नीरे सबू ते दूर नानका पलिप्त रहा परपूर कई कोट पाताल के वासी
कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीवह मरे, कई कोट गोजोनी फिरह, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले तक पाहे, कई कोट गिये तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजन्ते, आत्म है पार ब्रह्म लहन्ते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन।

वह अपने जन को सास सास मारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कहे दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग किन मैं थापु थापन हार अंत नहीं किछ पार आवारा हुक्मे तार तर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रिहा समाई प्रभावै मानुक गत पावै प्रभावै ता पाथर तरावै प्रभावै बिन सास तिराखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पतत उधारै आप करै अपन विचारै दुहा सिरिया काप स्वामी खेलै बिकसे अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जी जानते अपने आप बचै भरमे भूला दह दिस्तावै निमक माए चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म करता पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तित तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाकू अपनी करै बख्शीस ताका लिखा नगन जगदीश जीव पिन सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई पुनतियो कबहू ऊंच नीच मैं बसै कबहू सोग हर करंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू बकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिला बनहार कबहू निरत करै भोपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेकारी नीच का साजा कबहू अपकीरत मैं आवै कबहू भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू हुए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिर साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवै डिचावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू सा संगत पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रतिक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मह जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना

आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कज उसकव करने हार उसते भिन कहो किछ होए थान तनंतर एकै सोए अपने चलताप करने हार कौतक करै रंग आपार मन मैं अमन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कूट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जने उदरन हार संत की निंदा नानका बार बार अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन तृप्त जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाही नान संत पावै तावे भीगत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिन टिक न पाई संत का निंदक माँ हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत भावै ता उसका भी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी कल सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाउ नानक संत भावै ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहि अपन बीजा पे ही काहे संत के दुखी कवर न रखन हार नानक संत भावै ता ले उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यों बुआड़ दिल के तमाहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथिया कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी कौ दर गह मिलै सुजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी न मरे न जीवाइए संत के दुखी के पुजै नयासा संत का दुखी उठ चलै निराशा संत का दुख न तृष्टै कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए सब घट तिसके करनै हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तद करहु दिन रात सहत्याहु सास गिरा सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कुथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तज हो से आनप सुरजन हो सिमर हो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पहु जाए अष्टपदी मानु की टेक वृति सब जान देवन को एकै भगवान जिसकै दिए रह अगाए बौर न तृष्णा लाग आए मारे रखै कुआ मानु कै किछ नाही हाथ तिसका हुकम भू सुख होए तिसका नाम रखंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कुए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसना मृत पियु सदा सुहेला कर लह जियु नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिय हर बिंद।

कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक पूजल मथा बडभागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो कर विचार से तनवंत गनी संसार मंतन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानू ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस कहत सर्व रूप त्यो हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बखियान गृष्ट में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्म मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं।

सूजन सदा अरोग ज्यो मंदर कोथा मैं थम्मन ज्यो गुरु का शब्द मने अस्थम्मन ज्यो पाखा नाव चढ़तरै प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगाश गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद चिती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लेहो मन मूल राम नाम हृदय महतोल लाद खीप संतै संचाल अवर त्याग विख्या जंजाल धन धन कै सब कोए मुखु जल हर दर गै सोए इहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तुए तुए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करहो इसनान साध उपर जाइये कुर्बान साध सेवा वड भागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाईए अनेक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिस्काव करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जाकै हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत सच जड़ साचा आकार सच वरतै सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख मानु की तू प्रीत आग तिस ते परै नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन एहो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नित्र पूर तिसका मंत्र न जाने होर अनदरु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिए करता कह राज में राज योग में जोगी तप में तपिस्तर ग्रस्त में भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मित नाही जा की लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाकू परमाई जन्म मरे फिर आवै जाय ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जना वै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिदकिनो विस्तार प्रभ विनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नानक हर नाऊ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाई तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योति सुभाव है सोवर तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे उदाते दुख कट नहार जा कै संग तरह संसार

हिवतानुसार अष्टपदी। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, और उपाव समीत विसार हो। चरण कमल रिद मैं उतारू, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन बाहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन कौ चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख कौ नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबा को करह भली करनी, सा सुबा भज हर की सरनी। अनिक पावी रोग न जाए, रोग मिटे हरव कदलाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जब नानक दर गए परवान। मन प्रबुद्ध हर कह नाए, दह दिस ताव तावै ठाए। ताकु बिघन लागे कोए, जा कह हृदय बसै हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भाव बिन सह पूर्ण होए आस, भगत पाया तुम प्रगास। तित कर जाए बसै अविनाशी, कहु नानक काटी जमपासी। तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आव त्याग शरण गुरुदेव। और रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनिक उपावना छूटन हारे, सिमरत सास वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए। संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना। सुतमेट कुतंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। असहस्ती रथ सवारी, झूठा डम झूठ बासारी। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, ना विसार। नानक पुछताना गुर की मातू, लेह याने भगत बिना बोडू बेस्याने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन बाही, जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कैत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नान गुण गाओ। गुण गाओ तिरि उतर समैल, बिन सजाए हौ मैं बिख फैल। होए अचिंत बसै सुख नाल,

सच तना हर पूंजी सच करो बिहार यहाँ सुख दर गय जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक एको एक एक हर आप पूर्ण पूर हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भय एक अराज प्राचित गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक इत जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावूं सास सास प्रभ तुम्हें त्याहूं चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एको टेको आधार नानक मागे नाम प्रभु सारु प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजय चाउ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में रखै गुर प्रसाद को बिरला लखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुर पूरै तथि है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहु काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत भाई तरिय संसार बिन भगती तन होसी चार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुआओ नेत्रोपेख दर्श सुख हुए मन विकसै साध चरण धोए भगत जना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचल सुधा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुर कारण करताल भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाहि लावै मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए निक राज भोग डयाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हरनीत भली सुकरणी शोभा तनवंत

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार यो कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चेन न जापत, तब हरख सो कहु किसे व्यापत। जब अपन आपा पार ब्रह्म, तब मोह का किशोभत परम। अपन केला वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किस को गनी। जब एक हरगम पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई, तब शिव शक्त कहो कित ठाई। जब आप है आप अपनी ज्योत तरे, तब कवन निडार कवन कत डरे। अपन चलता करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुखापन आसन, तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किसोए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आपा पी चर जा, नानक अपन रूपा पी उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निर्मका निर्बान, तह कौन कुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कौकीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तय किसे भूख कवन तृप्तावे। कर्ण करावन करने हार, नान करते का नाही समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै प्रवीण, तय वेद कतेव कहा कुचीन। जब अपन आप आपुर है, तो सगन अपसगन कहाँ विचार है। जय अपन ऊच अपन अपनेरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान आप। जय छल छेद भेद समाया, ऊहा किस व्यापत माया। पुसको आपया देश, त्यो गुण का ना ही प्रवेश। जय कहे एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पतियारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊंचा, नानक आपस को आप पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंचकार, त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पाप तय पही कहावत, को नर को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हम मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर दिख है, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अभिगत भगत है आप, जय पसरै पासार संत प्रताप। दूह पा कया पेतनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आप है कौत करे आनंद चोज, आप है रस भोग निरजोग। जिस भाव है तिस आप बनाए लावे, जिस भाव है तिस खेल खिलावे।

निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अन दिन पूजै गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभया पहमेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ

गदी पूरे गुर का सुनु उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गुप्त रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु सा संग अगण सागर तरहु हर तन के पर लेहु भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कह है धार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली तलाल रतन सुनत कमावत वो तो उदार आप त्रैलो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भये सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उसद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब त्यूच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने इहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बुकानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जा

प्रभु चीत। जन्म मरणता का दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा मृता की बानी, एक ना मन माहि सुमानी। दुख रोग बिन से पै परम साथ।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाणपा लख होहे ता एक न चलै नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईऐ। एक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाईऐ। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहै ना कोए। गावै को ताण होवै किसै ताण। गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण वडियाइयां चार। गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करे तन खे। गावै को जी लै फिर देह। गावै को जापै दिसै दूर। गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे। जुगा जुगंत्र खाही खाही। हुक्मी हुक्म चलाए राह। नानक विगसै वे परवाह। साचा साहिब साच नाए पाखिया पाउ अपार। आख है मंगह है देह देह। दात करे दातार फेर के अगै रखिए। जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए। जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान। नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया सुमाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी। जे तीसरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए। नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले। जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुना है सद पीर सुरनाथ। सुना है धरत धवल आकाश। सुना है दीप लो पाताल। सुना है पोहे ना सकै काल। नानक भगतां सदा विगास। सुणाए दुख पाप का नास। सुणाए ईसर ब्रह्मा इंद। सुणाए मुख साला हनुमंद। सुणाए जोग जुगत तन भेद। सुणाए सासत सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास। सुणाए दुख पाप का नास। सुनाए सात संतोख ज्ञान। सुनाए आठ साठ का इशनान। सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान। सुनाए लागै सहज त्यान। नानक भगता सदा विगास। सुनाए दुख पाप का नास। सुनाए सारा गुणा के गाह। सुनाए शेख पीर पात सा
सुनाए अंधे पावे राह सुनाए हाथ होवे असगाह नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछै पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै सुरत होवै मन बुद्ध मनै सगल भवन की सुध मनै मोहे चोटा ना खाए मनै जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक न पाए मनै पत स्यों प्रगट जाए मनै मग न चले पंथ मनै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै पावै मुख द्वार मनै परवारै साधार मनै तरै तारी गुर सिख मनै नानक पवै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगै मान पंचै सोहै दर राजान पंचा का गुर एक क्यान जे को कहै करै विचार करते कै करणै नाहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया गुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ेयार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीचो कहै विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे हे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुकमी आवह जाहो
तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन खेत कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण थेत वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव साला ही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाणै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास उड़क उड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लिखा होए ता लिखिया लिखै होए विनाश नानक वड़ा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै सुमुंद ना जानिए सुमुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जेत सुमन होना भी सरह है अंत ना सिफती कहण ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखण सुनण ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कहो जाने सोए जे वड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए किते मंगा है जोद अपार कितया गणत नहीं विचार किते खाप तुट है वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह है अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमूल धर्म अमूल दीबाण अमूल तुल अमूल परवान अमूल बखसीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे हे ता आख न सक है केई के जे वड़ पावै ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावह तुहनो पाउण पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे
गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारी गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारी गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारी गावन पंडित।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੋਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਭਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋ ਜਿ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ, ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ, ਕ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰਗ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਹਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਆਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਿਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੀ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਚੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਤ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਹਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਹਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇਕ ਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ।
నమో జ్యోగ జ్యోగవేశ్వరం పరమ సిద్ధే, నమో రాజరజవేశ్వరం పరమ ధృద్ధే, నమో శాస్త్రపాణి నమో అస్త్రమాణి, నమో పరమ జ్ఞాత నమో లోకమాత అపేక్షీయ పరమే అపోగీ అపుగతే, నమో జ్యోగ జ్యోగవేశ్వరం పరమ జ్యుగతే, నమో నితనారాయణే క్రూరకర్మే, నమో ప్రేత అప్రేత దేవేశ్వర్మే, నమో రోగహర్త నమో రాగరూపే, నమో సాహసాహం నమో పుహూపుపూపే, నమో దానదానే నమో మానమానే, నమో రోగరోగే నమస్తం ఇష్నానం, నమో మంత్రమంత్రం నమో జంత్రయంత్రం, నమో ఇష్ట ఇష్టే నమో తంత్రతంత్రం, సదా సాచ్యతానంద సర్వం ప్రణాసీ అనూపే అరూపే సమస్తుల నివాసీ, సదా సిద్ధదా బోధదా బిరదకర్త అధో ఉరుద అర్ధం అగం ఓగహర్త, పరం పరం పరమేశ్వరం ప్రోషపాలం సదా సర్వదా సిద్ధ దాతా దయాళం, అషేది అపేది అనామం అకామం సమస్తు పరాజీ సమస్తస్తతహమం, తేరాజోర్చాచరి శాంద జలే హై థలే హై అపీత హై అపే హై ప్రభు హై అజూ హై అదేశ హై అపేశ హై, భుజంగ ప్రయాత శంద అగాధే అబాధే ఆనందీ స్వరూపే, నమో సర్వమానే సమస్తి నిధానే, నమస్వం నిర్నాథే నమస్వం ప్రమాథే నమస్వం అగంజే నమస్వం అపంజే నమస్వం అకాలే నమస్వం అపాలే, నమో సర్వదేశే నమో సర్వభేసే, నమో రాజరాజే నమో సాజ సాజే, నమో సాహసాహే నమో మాహమాహే, నమో గీత గీతే నమో ప్రీత ప్రీతే, నమో రోగరోగే నమో శోక శోకే, నమో సర్వరోగే నమో సర్వభోగే, నమో సర్వజీతం నమో సర్వపీతం, నమో సర్వజ్ఞానం నమో పరమతానం, నమో సర్వమంత్రం నమో సర్వజంత్రం, నమో సర్వదృశ్యం నమో సర్వకృశ్యం, నమో సర్వరంగే త్రిపంగీ అనంగే, నమో జీవజీవం నమో బీజబీజే అఖిజే అపిజే సమస్తం ప్రసిజే, కృపాలం స్వరూపే కుకర్మం ప్రణాసీ సదా సర్వదా హృద సిద్ధం నివాసీ, చర్పట శాంతత్వ ప్రసాద అమృత కర్మే అమృత ధర్మే అఖల్ జ్యోగే అచల భోగే అచల రాజే అటల సాజే, అఖల్ ధర్మం అలఖ కర్మం సర్వం దాత సర్వం జ్ఞాత సర్వం పానే సర్వం మానే సర్వం ప్రాణం సర్వం ప్రాణం సర్వం భుక్త సర్వం జ్యుగత సర్వం దేవం సర్వం పేవం సర్వం కాలే సర్వం పాలే, రూఆల శాంత త్వ ప్రసాద ఆది రూప అనాద మూరత అజోన పురుఖ అపార సర్వమాన త్రిమాన దేవ అపేవ ఆది ఉదార సర్వపాలక సర్వకాలక సర్వకో పూర్ణ కాల యత్ర తత్ర విరాజహి అవతూత రూప రిసాల, నామ ఠామ నా జాత జాకర రూప రంగ నరేఖ ఆది పురుఖ ఉదార మూరత అజోన ఆది అశేఖ, దేశ ఔర నా పేస జాకర రూపరేఖ నరాగ యత్ర తత్ర దిశా విశా హోయ ఫైల్యో అనురాగ, నామ కామ విహీన పేఖత తామహు నహ జాహే సర్వమాన సర్వత్ర మాన సదైవ మానత తాహే, ఏక మూరత అనేక దర్శన కీన రూప అనేక ఖేల ఖేల అఖేల ఖేలన అంతకు ఫిర ఏక, దేవ పేవ నా జానహి జేహ భేద ఔర కతేవ రూప రంగ నా జాత పాత సో జానహి కేహ జేవ, తాత మాత నా జాత జాకర జనమ మరణ బహీన చక్ర బకర ఫిర చతుర చక మానై పూర తీన, లోక చౌ దాహ కే బిఖై జగ జాపహి జేహ జాప, ఆద దేవ అనాద మూరత థాప్యో సభ జేహ థాప, పరమ రూప పునీత మూరత పూర్ణ పురుఖ అపార సర్వ విశ్వరచ్యో స్వయంభవ గడన పంజనహార, కాలహీన కళా సంయుగత అకాల పురుఖ అదేశ, ధర్మ తామసో పరమ రహత అపూత అలఖ అపేస, అంగరాగ నా రంగ జాకహ జాత పాత నా నామ, గర్భ గంజన దుష్ట పంజన ముకుతదాయక కామ, ఆప రూప అమీక అన ఉస్తత ఏక పురుఖ అవతూత, గర్భ గంజన సర్వ పంజన ఆది రూప అసూత, అంగహీన అపంగ అనాతమ ఏక పురుఖ అపార సర్వలాయక సర్వకాయక సర్వకో ప్రతపార, సర్వగంత సర్వహంత సర్వతే అనపేఖ సర్వశాస్త్ర నా జానహి జేహ రూపరంగ అరరేఖ, పరమ వేద పురాణ జాకహ నేత పాకత నేత కూడ సిమ్రత పురాణ శాస్త్ర నా ఆవహి వహ చేత, మధుభార శాంత త్వ ప్రసాద గుణగణ ఉదార మహిమా అపార, ఆసన అపంగ ఉపమా అనంగ అనపౌ ప్రకాశ నిసదిన అనాశ,
अजान बाहु शाहन शाहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाटे चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पूजांग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिसय अदिशय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद कथते कि आशिज दिशा कि अभिज पेशा कि अगंज कर्म कि अपंज परम कि अभिज लोक कि अदित सुक कि अवतूत वर्ण कि विभूत करण कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि आशोक वर्ण कि सर्वा अभरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनपौ अनुपय के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिने के एक अधीन के रोजी रजा कह रहीमे रिहा कह के पाक व्यैब है के गैबुल गैब है के आफ बुल गुना है के शाहान शाह के कारण कुनंद है के रोजी देहांत है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं फही में के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन अल वजू है तमाम उल रजू है हमें सु सलामे सलीखत मुदामे गनीमल सिकस्त है गरीबल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीन अल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेक उतरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बेपूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्त सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्व पहाके सुसर्पा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप हैं अशिज हैं अशुत हैं कि नरकं प्रणाश हैं पृथ्वीवल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है युगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंत है अबंध है अपागत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगंभ है
अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है, चरपट छंद त्वा प्रसाद, सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंगख्याता, सर्वंगज्ञाता, सर्वंगहर्ता, सर्वंगकर्ता, सर्वंगप्राणं, सर्वंगप्राणं, सर्वंगकर्मं, सर्वंगधर्मं, सर्वंगयुक्ता, सर्वंगमुक्ता, रसावल छंद त्वा प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं शरीफ है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्वा प्रसाद। के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमें सुल सलाम है, समासुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुस्न चिराग है, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रोजी देहंद है, के राजक रहंद है, क्रीमल कमाल है, के हुसनल जमाल है, गनीमल खिराज है, ग्रीबुल निवाज है, हरी फुल सिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकम प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकम प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परम ईश है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलं प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलं अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार छंद त्वा प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हरनर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिसविस अपंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास अजान बाह एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कार कार प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझांज गात अनरंज बात अनठट पंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अतठीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद। करुणालय है, अरिकाल्य है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रेत के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंपार है, सर्वंकार है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्ब्र है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खाल खंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पाव पंजन है, अरिगंजन है, रेप तापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संगताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते,
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसु आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शंद अजय अलय अपह अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल पुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनिमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें तवा प्रसाद सवैये श्रावक सुद समूह सिधान के देख फिरे घर जोग जति के सुर सुरार्दन सुद सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जार संग अनूप उतंग सुरंग सुवारी कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारी भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पये तो कहाँ पये भूपत अंत को न गेही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवैख भवान के भूपत कौन गणनी जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार कदेख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सो दिसि पाह दुरंत दुबा सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दान वदेफ निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट ईश नानक जादिक दान अनेक सुअम्बर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाथ फ्रियो लिये साफ समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशाब शीस निवायो को भूतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तहायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तहायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो बाच बेनती चौपाई
हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हू जो सदा हमारे पच्छा श्री असतु जो करे हवर अच्छा राख लिहो मोहे राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाध कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घाट घाट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपने बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीने ओत भुज खान बहुर राच दीने कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है आए है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खाड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ द लिहो उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सोबराता केल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री असतुज जप भये दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर की रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को काहै चौपाई संबत सत्राय सहस पणि जय अर्ध सहस फोन तीन कहि जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा
सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहेओ सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को शाटक है गहो तुहारू द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंदास तुहार सगल द्वार को शाटक है गहो तुहारू द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तप पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दों ता गावो हरि केरा मन जने वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सुवारणा सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा गुरबाण कीता गुरु विटहो जिस दियां ए वडियाइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंठुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे कहे नानक तय सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया केस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवै बाज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरे दह दिस एक नाम लाग सुवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवहु संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ तेरी कित द्वारे पाईए तान मान तान सब सौंप गुर कहो हुक्म मने पाईए हुक्म मने हो गुरु की रागा वह सची बाणी कहे नानक सुनो हो संतो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुरबान कीता तिसै विटों जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या तू आख वखाणा है आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा आगम है तेरा अंत ना पाया
सुर नर मुन जन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसुण आया, लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खने अहो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। कहे नानक चल भगता जुग जुग निराली, ज्यों तू चला है तिव चला है स्वामी होर क्या जाना। गुण तेरे जिव तू चला है तिव चला है जिना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावहे। जिसनु कथा सुनाए आपणी से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिव चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहों लिखिया आया। एक फिरा है तनेरे करह गल्ला गली किने ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विण सह जाए सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो वह शब्द लागहो हर सिंह रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए। जियो मैले बारोह निर्मल, बारोह निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मन होवे सारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियोह निर्मल बारोह निर्मल, बारोह ता निर्मल जियोह निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचै नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिने खटिया भले सेवण जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै संभाले। आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाणै कोए। कहे नानक सुनहो संतो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुकत न पावै। पावै मुकत न होर थै कोई पुछो बबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुकत न पाए। फिर मुकत पाए लाग चरणी सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुकत न पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी। बाणी ता गाव हो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तक कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करे रसना कहया कशु न जाने। चित जिनका हिर लया माया बोलन पै रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाऊ।
ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਉ ਸੇਵ ਸਾਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੀ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਮਨਹੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟਹਾਉ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੇਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਵਿਚਹੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਬਣ ਜਾਰਾ ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਾਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪਏ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੇ ਨਹਾਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੇ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ
ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿੜਾਣੀ, ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਪੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਫਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵਨਿਦ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਪੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹੇਲਾ, ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹੇਲਾ ਕਰ ਸੱਚੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾਤ ਉਦ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ, ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ

जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिना दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणिया दे माण सतगुरु, नेताणिया दे ताण सतगुरु, ने ओटिया दी ओट, ने आसरिया दे आसरा। सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह।

भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा

कोलू चरखा चक्की चक थल वरुले बहुत अनंत लाटू मा धानियान गह पंखी पौंदिया ले नसा सुवे चढ़ पुआई जन नानक पौंदिया।

0: छाई पाए मूर्ख अंधे पत गवाए बिना वे किस्ताए न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने सिर पछताणी।
1: बेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नजर करे सब पाए आस अंधे से तेने केवल हाउ मैं शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन।

0: पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करेगा वह वह मंगे मुख द्वार। जति सदा वह जुक्त न जाने छड़ बह कर बार। सबको पूरा पे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: नानक सच्चा विखे सोए सब निशाला मारियां करता करे सोए। अग्गे जात ना जोर है अग्गे जियो नवे जिनके लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर क्रम जना को तुत पाया।

कौन कृष्ण जात भया पार जात गोपी लह आया वृंदावन में रंग किया। कल में वेद तर्पण हुआ नाम खुदाई लव पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पड़का पठानी।

संध्या बादम सिल पूज बगल समादम बुछूट विकुण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग धोती वस्त्र पाटंग जे जान स्वर्म करम सब हो कर निश्चो करम कौ नानक ने चौत्या वै गण सतगुर बाट न पावे पौड़ी कपड़ू।

मत्स्य टिक्का तेड़ धोती तो कखाई हथ छुरी जगत कसाई नील बस्त्र पैर हुए प्रमाण मिले तान ले पूज्य पुराना भाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे न जाना।

सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी से आए वार्षिकवती पाचे दस प्रथम भगवती से मर कहे गुरु नानक लेते आए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से मैं सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कानून द्यावता है सब साई हुए सहाय दसवें पाचिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय दसम पाची ने पुत्र आत्मश्रू सह श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदाता अंतर के खालसा बोलो जी वाहे गुरु। गुरी महाराज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जन नाम क्या प्या वन चा क्या दे जलाई ते वाई देख लिट कीता तेना प्यारे सत्यारियां की कमाई दा ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लुहाइया चरखड़ियां चले यार नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा सिखी से केसा स्वस्था संघ लुहाया तिना की कमाई दा ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजाबल गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता वै चित आवन का सर का सर सुखो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देखते हैं कि फतेह की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ छोड़िया गलतान अपनी खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु गुरदार पिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास पावे ताना आने रास एक ही बनवाज आपके जन कम दरदास उतार पिता जी ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुख मोहितारे धन धन श्री गुरु हर किसी सबसे चे पाचे दार बताइए प्रकाश गुरु दुशियां दार जी श्री हर किसम के पठवे पातशाह जी प्रकाश गुरु दुशियां दार जी संसार भर दंगत आप भी चरण हाजिरी भर रही है मस्तक हो रही है कृपा सचे पातशाह जी गुरु सरदार मेहर करो बख्शिश करो सारी संगत मेरे पास रखो सारी संगत हाजिर प्रवान करो कड़ियां खिलाओ बख्शिश करने गुरु महाराज सारी संगत अपने चरण नाम जात बख्शिश करके गुरु महाराज श्री गुरु हर किसम सचे पातशाह जी सारे मार्ग को अपनाने वास्ते उन्हें चलने हुए मार्ग सचे पातशाह जी अपना होने श्री विवाज आदेशों के चलने वास्ते उन्होंने उपदेश मनने वास्ते गुरु महाराज संगत ने कृपा करो बख्शिश करो उद्यम बख्शो शाह बख्शो भावना दाद कृपालता करो दतार जी उन्हें साहे मार्ग में बनाने वास्ते भावना दाद बख्शो कृपा करो दतार इन्होंने खुशियां आप दिन बख्शिया दातों में पितर कटार सारी जगह त्याग कर दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखां कलेशां रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी ये गीब रिवाज आपकी बख्शिया दाता ने लगना छोट सेवा प्रवान करनी गीब रिवाज आपके चरणा सेवा करनी सारे प्यारिया सिंगा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चंड करो बख्शो सदा इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्श पालता करो गिरफ गुरु ग्रंथ साहब चे पाच करो दता जियो आदि दरगे सेवा गीब रिवाज परिवार वालों गरीब रिवाज मंडेर परिवार वालों काका कबीर सिंह ने जन्मदिन की खुशी में आपके चरणा धन्यवाद कर दें शुक्रिया अदा कर दता दोस्तों एक डर आपके चरणा भेटा कि प्रवान दतार बख्शिश कर दिया काका कबीर सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौन का आग्ञा कर बख्शा दतार बच्चे गुरु महाराज कृपा करो उची विद्यादार की कृपा करो लंबी आयु बख्शो समत बख्शो माता पिता धर्मदेश कौन सदा आग्ञा कर बख्शिश कर दतार मेहर करो मैं बख्शिश कर दिया मेर परिवार दमाइया सफल करो कारो जाते दतार मेहर करो सारे परिवार दिता तंदुरुस्ती सुख शांति चंड कला करनी परिवार में एकता स्वागत पे आज बख्शी करके सन दाल बख्शो चक दतार चरना त्या आप राजभव रखो सत्रह अपने चरण सेवा दाल बख्शी करने के बाद दतार की दुआ करो सचे पातशाह जी हो सचे पातशाह दरकर सेवा दार बीबी जसवीर कौर परिवार की तंदुरुस्ती सुख शांति चंड कला वास्ते कृपा बेनती करते हुए दतार अज कौर परिवार की खुशी भी दतार जी आप ध्यान धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं परिवार की सुख शांति वास्ते बेहद मारक हर प्रवान करो बख्शिश करने गरीब
ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਰੀ ਕਲਾ ਕਾਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸੁਆਗਤ ਪਿਆ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰੋ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਸੇਵ ਕਰਨ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਰੀ ਕਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਰਖ ਮਿਹਰਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਦਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਖਿਲਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਛੇ ਇਸ ਚਾਨੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਸੁਆਗਤ ਪਿਆ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਉਤਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਜ ਕਾਲਜ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸੱਤਾ ਕੀ ਸਰਮਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਉਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਚਾਨਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪੰਚਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਉਤਾਰ ਮੇਰਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੈਨਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਬਣਾਓ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਤੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤਾਰ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਗੋਰ ਜਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਗੇ ਬਰੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ

मानो सब सुख नौ निध ताकै, सहज सहज जस बुलै देव रहाओ, तब एह मत जो सब मह पिखै, फुटल गांठ

जो खिन महकिल बिक सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे है सब

जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन ध्याए ना।

मत को भरम भुलै संसार, गुर बिन कोए न उतरस पार रहाउ, भूले को गुर मार्ग पाया।

0: पहला ही जरूरी रहूंगा पहला ही बात में तो वायर कनेक्ट कर दें तो रेडी कर दें पहले ही और कम तो कर लो अपना जरूरी है
1: इसे करके थले ला राइट
0: मतलब कनेक्ट कर वो माइक दे उन्होंने तो माइक कितने थोड़े आई में
1: तो हाला हाला में हो रहा है
0: छोटी है ना मतलब
2: इना चो ला लो
0: ला लो

0: धन्यवाद करेंगे। मेरे जगदीश देखियो शायद दिन हो गए, अपने को एक्स्ट्रा कहीं जगदीश सीख पाई है
1: एक सताई चाहिए,
0: बस सताई माइक दिन लोड पहनी है तो पूरी माइक दी है ना रेडी कर दो चार कर दो जल्दी सपा जब मैं कंप्यूटर खोला तुझे टक टक्कर जाइए उन्होंने बस इतने कर लेना 25-26 प्रिंट दी है ना नंबर लगे
1: माई ओ नाल ही

सम्मान योग्य सत्संगी जनों, मैं आप जी नूं जिन्हां शब्दां दा कीर्तन सुना रहा हां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी वडियाई विच जदों जदों भी जां प्रकाश होया, संपूर्णता होई, जां गुरता गद्दी ते गुरु साहिब शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होए, जो हुक्मनामे आए मैं उन्हां दा कीर्तन कर रहा हां। थोड़ा जा मैं क्योंकि सानू गाउण वाले नूं दिक्कत हुंदी स्केल दा हिसाब किताब हुंदा गाउण दा, उस हिसाब नाल मैं उपर तो शुरू किया है। जिहड़ा नदेड़ दी धरती ते हजूर साहिब हुक्मनामा सानू बख्शिश होया सी जदों गुरता प्राप्त हुई शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, उस हुक्मनामे दा मैं कीर्तन कर रहा हां। दूसरा शब्द जो सी सतगुरु आयो सरन तुहाड़ी, ए जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बीड़ संपूर्ण होई, गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी दर्ज कीती गई, 31वां राग दर्ज किया गया गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने दमदमा साहिब की धरती से सतगुरां नूं संपूर्ण रूप दिता, उस वेले का हुक्म है सतगुरु आयो सरन तुहाड़ी। तो जो पहला हुक्मनामा सी, पहला प्रकाश पुरब वेले उसी संतां के कारज आप खलोया, सो मैं तिना ही वो पावन हुक्मां दा मैं कीर्तन करांगा। मैं नदेड़ दी धरती तो शुरू कर रहा हाँ, वो स्केल दी वजह करके कीर्तन शैली दे विच इस तरह हो जांदा। आओ जी मिलजुल के गायन करिए।

0: 27 25 26 25 तो अगला
1: अगला 25
0: 26 है का कैसियो
1: 26 कैसियो
0: 27 है का वोकल
2: दो वोकल उसके लिए
0: हूँ अगे दो और वोकल ने 15 नंबर से एक नंबर 15 नंबर
2: देख ला केड़े केड़े आ देख हेलो हाँ एक नंबर है 15 और ब्लू मार केड़ा
0: 27
2: 27
0: 15 वोकल
2: हाँ देख
0: 15 27 15 से दो एक
2: 15
0: ਸਤਾਈ
2: ਕੈਸੀ ਛੱਬੀ ਆ